भन्ने 10 बजेको थाङमी खामको कालिम्छ खबरका स्वागत हो। खबरको साथमा खोगा दुकाई खेलमाया थाङमी स्याङझाको वालिङ अर्घा खाँचिङ नुवाइसा क्रममा बगैती विपद तथा दुधिका समय मृत गबसँग फेला पराइले हो। वालिङ नगरपालिका 9 भूमेकी 53 वर्षीय माया पाण्डे मंगलबार बर्सिन्टे स्थानीय अर्घा खाँचिङ नुवाइसा क्रममा खोलसाय बगैती विपद तथा दु थियो। चामाइसाकै खोलसाय बगैतु सूचना खलमसितु लगतै वडा प्रहरी कार्यालय वालिङ ट्याङ्क सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 30 गुलहम हेड क्वार्टर वालथी संयुक्त प्रहरी टोली खोजिङ खटाइसिङ खोजी लौसा क्रममा विपद थादु स्थानदेखि करिब 1 किलोमिटर नबी वालिङ नगरपालिका 13 शान्तिघाट स्थित खोलसँग रिङ्गा अर्काइदु अबुसँग पाण्डेको स फेला प्रायदु जिल्ला प्रहरी कार्यालय साङ्छाका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक रमेश दत्त अवस्थी ए यासीले खोक्दो सुरक्षाकर्मीको टोली ए सब निकालाई ते आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया हाबी बढाइसित बारे जानकारी विस्तृत हो। मोरङको बुढी गंगाङा सफारी दुर्घटना थादु बिरे सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदारको मृत्यु थाले हो। सोमबार साँझ बसे मोटरसाइकलकै ठक्कर विरुद्ध बिरे दुर्घटना थादु हो। मोरङ ट्राफिक प्रहरी प्रमुख एस इन्सपेक्टर सन्तोष नेपालका अनुसार वीरगंजिङे विराटनगरतर्फ यादु को दिख 7913 नम्बरको बस ए पश्चिमी पूर्वतर्फ राधु क्रस लुङ्ती राधु प्र दी 00 ओली 00 ओली प 0046 नम्बरको मोटरसाइकलकै ठक्कर विरुद्ध थियो। दुर्घटनाको प्रायदी मोटरसाइकल चालक सशस्त्र प्रहरी बलका सहायक हवलदार बुढी गंगा ओली ने भोक्ति 36 वर्षीय सुदीप खड्काको मृत्यु थाहा हो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते थाहा खटकाका उपचारको लागि बुढी गंगा स्थित विराट स्थित सेना अस्पताल हेर्सिदु थियो। उपचारकै क्रममा चिकित्सकले साँझ 6:52 बजे दाई खटकाका मृत घोषणा लङ्सिदु प्रहरी जानकारी विसिदु हो। मृत खटका सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बीओपी बोट आउट पोस्ट स्वीकृत कट्टी सप्तरिङ कार्य होक्दो थियो। बस चालक सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका 5 शिवचोकका 48 वर्षीय राजन दाहालका प्रहरी नियन्त्रणमा ल्याइसिले हो। यादगारी देशका आएजो सुठाईगा हल्कादेखि मध्यम वर्ष थाले होक्दो लिपिको 12 घण्टामा संघ सभाको टाँसी देशेगा सकले भन्दा आहे 212 मिलिमिटर वर्षा मापन थादु मौसम पूर्वानुमान महासागर जानकारी पिसिदो हो। यस्तै भक्तपुरको चागु नारायणगा ओहि 90 मिलिमिटर वर्षा थादु मापन लुङसीले खोप्दो नाले कोसी बागमती त्याङ गण्डकी प्रदेशको दिनेश ढाइपलिङ हल्कादेखि मध्यम टेकाको वर्षा थाले हो। याङ कोसी बागमती त्याङ गण्डकी प्रदेशको हिमाली त्याङ पहाड़ी भागका दिनेश ढाइपलिङ जेगा वर्षाको सम्भावना हो। महासागर जानकारी विस्तृत हो। देशका पहाड़ी भागका केही ठाइगा मेघगर्जन चट्याङ सहित मध्यम टेकाको वर्षा हिमपातको सम्भावना हुने हो। यादु योडी कोशी प्रदेशको पहाड़ी त्याङ तराईका दिनेश ढाइपलिङ जेगा वर्षाको सम्भावना हो। नदी आसपासका क्षेत्र पालीमा होयङदु पाली सावधानी अपनाइसा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा आग्रह लुङसिदो हो। रसुवाको बोटेकुसी थाती त्रिशुली नदीका रादु विनाशकारी बाढीको याङ स्वभाव तथाले होक्दो नाले टेका 3,095 जनाको शव भेटाइसीले हुँदो भने 5,230 जना सम्पर्क विहीनले हुँदो। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण यी सार्वजनिक लुङसिदो लिपिको विवरण अनुसार चितवनगा शाखाले भन्दा आए 1,064 शव भेटाइसीले होक्दो। यस्तै नवलप्रासी पूर्वगा 1,932 नवल प्रासी पश्चिमगा 1,022 नुवाकोटगा 1,100 रसुवागा 2,086 गोर्खागा 77 धादिङ 72 त्याङ तनहुगा 38 जना होयङतु भेटाइसीले होक्दो। उपचारको क्रममा काठमाडौँका निस्काको ज्यानयादु हो। भेटाइसँगै सबमध्ये 2,000 ओलीकाको सनाखत थाकुतुम्सीले होक्दो। बाँकीको पहिचानको लागि डीएनए परिचयन लगायत प्रज्ञा हाबी बढाइसित प्राधिकरणले जानकारी विस्तृत हो। बाढी लिबे 13,737 जनाको उत्तर लङ्सीले
হুদ উদার থাইন্দু মধ্যে বিভিন্ন তেত্রিশটা হোল্ডিং সেন্টার নাসিদ নাগরিক মধ্যে নোয়াকোটগা দুই হাজার উনিশশো উনানসে রসুয়াগা আটশো পঁচিশ ত্যাং ধাদিংগা চৌরানব্বই জনা হয়েগলে হুদ এস্তে বিভিন্ন উনিশ অস্পতালগা সুমশে একচালিশ জনাক উপচার থালে হুক্ত নিশ্চয় অঠাত্তর জনা উপচার লিবি বিস্তার থাইলে হুদ সুরক্ষা নিকায় পালিকা তথা বিভিন্ন সরকারি ত্যাং গরি সরকারি ক্ষেত্র সম্প্রবীণকু খোঁজি খাইতেকু উদার তথা উপচার দ্যাং রাহত ব্যবস্থাপনকা জেদ থালে হুক্তুকা বাটি লংদু ছেটি পুনর্স্থাপনাকা লাগি সাত অর্ব রূপায় ভন্দা আয় লাগাইছে প্রারম্ভিক অনুমান লাগাইছি দুহ। हवस् त भजिन्टी दस बजेको थाङबिखाङको कालिन्चो खबर तापान खबरी प्राविधिक मानकाई थैनाबाद गिदुङले गाई बिदा थाङ्गादो नासाटे हुने कालिन्चो क्याफेन सेवा।

0: सर्वाधिक विश्वासिलो र गुणस्तरीय साथै सबैभन्दा बढी बिक्री हुने पोषक पेलेट दानाले ल्याएको छ तपाईँ हामी सामु नयाँ आस्था र नयाँ खुसी। पोषक पेलेट दाना।
1: श्रमजीवी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 20 साधारण सभा सम्बन्धी सूचना। यस संस्थाको संचालक समितिको मिति 2083 भाद्र 5 गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार संस्थाको 20 वार्षिक साधारण सभा देहाय बमोजिमको मिति समय र स्थानमा एकाईगत रूपमा संचालन तथा सम्पन्न गरिने भए प्रस्तुत तथा छलफल आर्थिक वर्ष 2082-83 लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत तथा अनुमोदन आर्थिक वर्ष 2083-84 वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत तथा छलफल संस्थाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था बारे जानकारी तथा छलफल लेखा परीक्षक नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धमा संचालक समितिको कार्य सम्पादन तथा प्रतिवेदन सम्बन्धमा छलफल नयाँ संचालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन निर्वाचन सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया तथा निर्णयहरू संस्थाको विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन सम्बन्धमा साधारण सभाको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न शेयर सदस्यको तर्फबाट प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने बारे र विविध वार्षिक साधारण सभा हुने मिति 2083 असोज 8 गते स्थान भिनप 5 विसुन्टोल समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म सम्पर्क नम्बर 97-42-42-75-17 मिति 2083 साल असोज 8 गते स्थान भिनप 5 घोक्सिला समय दिउँसो 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म सम्पर्क नम्बर 98-44-23-63-23 मिति 2083 साल असोज 9 गते स्थान सैलुङ 5 काटाकुटी बोर्डिङ समय बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म सम्पर्क नम्बर 97-42-42-75-17 मिति 2083 साल असोज 10 गते स्थान सैलुङ 3 गाउँपालिका आसपास समय बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म सम्पर्क नम्बर 97-42-42-75-17 मिति 2083 साल असोज 11 गते स्थान सैलुङ 6 ढुङ्गे बाखोर समय बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म सम्पर्क नम्बर 98-44-23-63-23 मिति 2083 साल असोज 11 गते स्थान सैलुङ 8 कालापानी समय दिउँसो 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म सम्पर्क नम्बर 97-42-42-75-17 मिति 2083 साल असोज 12 गते स्थान सैलुङ 8 जोर मनगाउँ समय बिहान 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म सम्पर्क नम्बर 97-42-42-75-17 मिति 2083 साल असोज 12 गते स्थान सैलुङ 8 सरन्थली समय दिउँसो 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म सम्पर्क नम्बर 97-42-42-75-17 मिति 2083 साल असोज 13 गते स्थान सैलुङ 8 पाँडेखानी समय बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म सम्पर्क नम्बर 97-42-42-75-17 मिति 2083 साल असोज 13 गते स्थान सैलुङ 8 भैंसे बजार समय बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म 97-42-42-75-17 मिति 2083 साल असोज 15 गते स्थान मेलुङ 1 पौटी सवाहल समय 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म सम्पर्क नम्बर 98-44-30-77-72 मिति 2083 साल असोज 15 गते स्थान सैलुङ 6 भित्रे भन्ज्याङ समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म सम्पर्क नम्बर 98-44-23-63-23 मिति 2083 साल असोज 17 गते स्थान सैलुङ 6 महिला भवन समय बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म सम्पर्क नम्बर 98-44-23-63-23 मिति 2083 साल असोज 18 गते। स्थान सैलुङ 7 वडा कार्यालय। समय बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म। सम्पर्क नम्बर 9844406824। मिति 2000